0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: क्या आपको लगता है कि खसरा सिर्फ बच्चों की हल्की बीमारी है? गलत धारणा. क्या आपको लगता है कि अब वैक्सीन की जरूरत नहीं रही? यह भी गलत धारणा है. मेलबर्न में खसरा फिर से फैल रहा है और यह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है. यह बहुत तेजी से फैलता है और गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है. सच्चाई यह है कि MMR वैक्सीन की दो डोज मजबूत सुरक्षा प्रदान करती हैं, और यह भी सच है कि यह वैक्सीन सुरक्षित, प्रभावी और आसानी से उपलब्ध है. अपने GP, स्थानीय फार्मेसी या स्थानीय काउंसिल के माध्यम से टीकाकरण करवाइए.
0: वेस्टर्न पब्लिक हेल्थ यूनिट, प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ.
2: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी, कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट. यहाँ देखें चमकते खनिज, टिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद. रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें, और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है. टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au.

0: 92.3 FM।
1: मेलबर्न में खसरा वापस आ गया है और तेजी से फैल रहा है। यह इंतजार करने का समय नहीं है। अभी भाग लेने वाली स्थानीय फार्मेसियां 20 से 59 वर्ष के वयस्कों के लिए मुफ्त MMR वैक्सीन दे रही हैं। कोई खर्च नहीं और कोई देरी नहीं। इंतजार मत कीजिए और जोखिम मत उठाइए। आज ही अपनी स्थानीय फार्मेसी, GP या काउंसिल क्लिनिक में वैक्सीन लगवाइए। अधिक जानकारी के लिए www.phu.org.au पर जाएं।
2: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
1: Melbourne Museum की नई भव्य प्रदर्शनी रोम एम्पायर पावर पीपल अब खुल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन। मूर्तियों और मोज़ेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें। बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au।
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
3: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं, अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
2: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
1: क्या आप जानते हैं कि मेलबर्न में खसरा मतलब मीजल्स फिर से फैल रहा है और मामले बढ़ रहे हैं। यह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और समुदाय में बहुत तेजी से फैल सकता है। अच्छी खबर यह है कि MMR वैक्सीन की दो डोज आपको और आपके परिवार को मजबूत सुरक्षा देती है। आप अपने GP, स्थानीय फार्मेसी या स्थानीय काउंसिल के माध्यम से टीका लगवा सकते हैं। मजबूत प्रतिरक्षा मतलब मजबूत समुदाय।
2: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ।
4: अगला कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित होगा।

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: गीतांजलि के आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राजीव अरोड़ा की ओर से आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।

इस सर्दी के मौसम में प्यार और रिश्ते अगर ठीक रहें तो मन में गर्मी बनी रहती है, और उसमें कितनी भी ठंड आ जाए वो आपको हाथ भी नहीं लगा सकती। ये गीत एक नाटककार अशोक कुमार द्वारा लिखा गया था, और ये उनके एक नाटक लव से लिया है हमने, और इसकी संगीत रचना मैंने खुद की है AI म्यूजिक से। आशा है आपको पसंद आई। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए कई तरह के रंग लेके आए हैं, लेकिन सबसे विशेष समाचार आज ये है कि हमारे कार्यक्रम के एक पुराने मित्र को किंग्स अवार्ड्स में जो सम्मान मिला है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल का, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उनसे आपकी बातचीत कराएंगे। और कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में आपके लिए कुछ खास मिठाई आ रही है सेलिब्रेशन के लिए। ये एक छोटा सा सैंपल, उसके बाद हम बातचीत शुरू करते हैं।

0: सौरभ मिश्रा मेलबर्न में लगभग 30 साल से रहते हैं। उससे पहले उन्होंने अपना जीवन ऑस्ट्रेलिया में, जो उनका जीवन का सफर है वो पर्थ में शुरू हुआ था। उनका जन्म हुआ था भारत में। मेलबर्न में हम उनको जानते हैं उनकी एंटरप्रेन्योरशिप के योगदान से, मेलबर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में उनके पार्टिसिपेशन से। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने उस उनकी जो पैलेटिव केयर की यात्रा रही है उसके बारे में लिखा है, और ऐसे कई उनके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशंस हैं। और 2026 के किंग्स बर्थडे अवार्ड्स में उन्हें सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल से। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भारत ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख सम्मान गिना जाता है, नागरिक सम्मान गिना जाता है, और उसमें तरह तरह के समाज के व्यक्तियों को जिन्होंने समाज में विशेष योगदान किया है उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनका सम्मान किया जाता है। सौरभ जी इस कार्यक्रम के मित्र हैं 15-20 साल से भी ज्यादा से, और आइए बात करते हैं सौरभ जी से। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे अनोखे व्यक्ति जिनकी पर्सनालिटी के कई डायमेंशंस हैं। इनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं के साथ साथ इनके साथ मित्रता भी हो, क्योंकि शायद इन्हें मैं इनको लगभग 30 साल से जानता हूं, और इनकी जो क्वालिटीज हैं उनकी मैं जब लिस्ट बनाने बैठा तो ये मुझे याद आई। वो है, फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरी है पैशन फॉर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और म्यूजिक इन जनरल ऑफ ऑल काइंड्स, पैलेटिव केयर और एंड ऑफ लाइफ केयर, कल्चरल ब्रिजिंग, टेकिंग कल्चर टुवर्ड्स फाइनेंशियल विजिबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप और उसमें किस तरह से वैल्यू बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप लाई जा सकती है, कविता यानी कि पोएट्री, ऑथर हैं, ये किताब लिखते हैं और ड्रामा में भी एक्टिव हैं, योगा और मेडिटेशन को कैसे जीवन का एक अनोखा अंग बनाया जा सकता है उसके बारे में ये बहुत पैशनेट और बहुत इंस्पिरेशनल हैं, और ओवरऑल ये बहुत अच्छे एक फ्रेंड हैं, ना सिर्फ मेरे बट जो लोग भी इन्हें जानते हैं उनके लिए। और इनका नाम आपको बताऊंगा तो शायद आपको हैरानी नहीं होगी, और इनके जो भी गुण हैं उन सब का एक आधार है, वो है आधार डेडिकेशन, भक्ति, प्रेम और सत्य का, ट्रुथ का। मैं बात कर रहा हूं हमारे मेलबर्न के दोस्त सौरभ मिश्रा की, जिन्हें हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल मिला है किंग्स अवार्ड्स, किंग्स बर्थडे के मौके पर। सौरभ जी, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस प्रोग्राम में कई बार आ चुके हैं लेकिन आज का मौका तो बहुत ही स्पेशल है। आपको ये जो सम्मान मिला है उससे हमें जो खुशी हो रही है उसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है, तो आइए आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद राजीव जी, और नमस्कार आपके सभी सुनने वालों को। आपने तो एक नव रंग की सूची बना दी कि मेरे जीवन के जो नौ रंग हैं, नौ रस हैं, उनकी सूची बना दी आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपने जाहिर है बहुत सोच समझ करके, काफी रिसर्च करके, और अपनी आपसे तो बहुत दिनों से 30 साल से जान पहचान है, तो शायद उसमें जो भी आपने देखा है तो, लेकिन बहुत सटीक आपने सूची बनाई है। ये सब, इन सब चीजों में गुण कितना है मैं कह नहीं सकता, लेकिन रुचि बहुत है।
0: मैं ये भी बात कर रहा था कि खाली रुचि तब होती है जब इंसान में इच्छा होती है कुछ एस्पायर करने की, कुछ बनाने की, टू मेक ए डिफरेंस इन द, यू नो, इन योर ओन लाइफ एंड इन अदर पीपल्स लाइफ। सो जैसे आपका, आपकी जो अप्रोच है कि भाई कोई नई मंजिल चुनी जाए, ना केवल आप अपने लिए वो मंजिल चुनेंगे पर आपके साथ जो हैं उनको भी आप प्रेरणा देंगे और उसको एक ऐसी चीज बनाएंगे जिससे ना केवल आपको और आपके आसपास वालों को लेकिन समाज में जनरल उससे खुशी और उसके भलाई फैलेगी। तो ये मुझे एक और कॉमन थीम लगी जो भी मैंने आपकी यात्रा देखी है इस समय तक।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो इस मौके पर आपको जो ये रिकग्नाइज किया गया है, हम रियली रियली हम उसके वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, बहुत गर्व है हमें और आशा है आपके परिवार को भी और आपके सभी मित्रों को भी उतना ही गर्व फील हो रहा होगा जितना मुझे हो रहा है। तो मैं एक आपके लिए थोड़ा अपने बारे में बताइए इससे पहले कि मैं कुछ और कुछ पूछना शुरू करूं।
1: अपने बारे में कुछ बताऊं वो तो फिर आपने एकदम सीधे
0: यात्रा कैसे शुरू हुई, आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई
1: राजीव जी? वो आपको एक कविता सुनाई थी मैंने, वही सुना दूं फिर?
0: जरूर से,
1: अपनी पहचान वाली, क्योंकि सबसे सटीक तो वही एक मेरा जवाब है आपके सवाल का कि कहा गया है ये मुझसे कि दूं अपनी पहचान, सवाल आसान जवाब मुश्किल, कैसे करूं बयान, नाम बताऊं काम बताऊं, अरे तुम्हें इन सबसे क्या लेना क्या देना, वैसे भी बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा घटा छटा के समझ लेना। तुम्हारे राह का हूं एक राही, तुम्हारी ही तरह भटका हुआ, पलकों सोया पलकों जागा इस स्वप्न लोक में अटका हुआ, कभी मिल जाऊं तो बस एक दोस्त समझ लेना मुझको, तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो बतला देना उसको, दो चार कदम हम साथ चलेंगे रास्ता कुछ कट जाएगा, मैं हूं और तुम हो ये भ्रम ही शायद हट जाएगा।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे जीवन की हमारे दृष्टि की परतें होती हैं जिससे हम देखते हैं कि और लोग हमसे अलग हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे जब वो परतें हटती हैं तो हम जानते हैं कि और लोगों में और हम में कितनी समानता है। तो आप ये बताइए कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं कि आपके जीवन की यात्रा का उद्देश्य क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। या यूं भी कह सकते हैं कि नॉर्थ स्टार, आपका नॉर्थ स्टार क्या है?
1: कैसे करूं बयान?
0: मैं इसीलिए हंस के बोल रहा हूं कि बहुत आसान सवाल है।
1: मेरे पास एक्चुअली इसका एक बहुत आसान जवाब है राजीव जी, और वो जवाब बहुत सोच करके बहुत तजुर्बों के बाद मैं आपको दे पाया हूं, और वो है आनंद की अनुभूति। जीवन का उद्देश्य वही है, आनंद की अनुभूति।
0: खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: और जितना वो सात्विक जितना वो आनंद हो उतना बेहतर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमको तो उपनिषद में बिल्कुल साफ बताया गया है, और एक बड़ी प्यारी कहानी है दरअसल ऋषि भृगु की, और उनका एक संवाद है अपने पिता के साथ जिनका नाम था शायद वरुण, ऋषि वरुण। तो यही सवाल उन्होंने पूछा कि मैं ब्राह्मण को जानना चाहता हूँ, ब्राह्मण मतलब उपनिषद में भगवान को ब्राह्मण कहा गया है, तो मैं ब्राह्मण को जानना चाहता हूँ, तो ब्राह्मण को जानने का क्या जरिया है? तो ऋषि वरुण ने उनसे कहा कि तुम ये समझ लो कि ब्राह्मण वो है जिससे जीवन उपजता है, जो जीवन को जो जीवन का आधार बनता है और जिसमें अंत में जीवन समा जाता है, वो ब्राह्मण है। तो तुम उस पर विचार करो कि वो क्या चीज है और तुम समझ जाओगे, तुमको ब्राह्मण का साक्षात्कार हो जाएगा। तो वो जाते हैं अपना, काफी काफी सोच विचार करके आते हैं, पहले तो कह देते हैं कि खाना है, ब्राह्मण खाना है, क्योंकि खाने से जीवन उपजता है, खाना जीवन का आधार है, और जब देह निकल जाती है तो देह से प्राण निकल जाते हैं तो वो फूड साइकिल में कहीं मिल जाता है, इस तरह से कुछ। तो ऋषि वरुण भी हंस दिए कि नहीं नहीं ये तो बहुत छिछला जवाब दे दिया। तो यूं करते करते वो अलग अलग सवाल के अलग अलग जवाब लेकर के आते हैं। तो खाने के बाद भी कहते हैं वायु है, फिर कहते हैं प्राण है, और हर बार वरुण कहते हैं नहीं सोचो। फिर उसके बाद वो और सटल चीजों पे जाते हैं कि मनस है, चित्त है। तो चित्त तक आकर के ठीक आ गई, बहुत करीब बात आ गई है, लेकिन कहते नहीं एक बार और जाके सोचो। और जब वो इस बार वापस आते हैं आखिर में, तो वो कहते हैं वो इसका जवाब मैं खुद जान गया हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, कि ब्राह्मण है आनंद। आनंद से जीवन उभरता है, आनंद जीवन का आधार है और अंत जीवन के अंत में आनंद है। तो जब उपनिषद में ये बात कह दी है राजीव जी, तो फिर मैं कौन होता हूँ उससे नकारने, उसको नकारने का।
0: और हमारा संबंध भी अपने आसपास सभी बंद है। हाँ जी, हाँ प्लीज।
1: हाँ मैं वही कर रही, नॉर्थ और नॉर्थ स्टार में मैं बहुत मासूमियत से भी कह रहा हूँ और एक एक ह्यूमिलिटी से कह रहा हूँ कि ये नॉर्थ स्टार आनंद का, जब से मैंने सोचा है इसका, जब से इसको लक्ष्य बनाया है, तो तब से ये है कि हर हर चीज पे, जीवन के हर अनुभव पे मैं, मेरे अंदर ये सवाल उठता है कि इस अनुभव में आनंद क्या है, और चाहे वो नकारात्मक अनुभव भी हो उसमें भी एक आनंद दिखता है, समझ में आ जाता है कि ये आनंद है। तो सकारात्मक नकारात्मक चीजें तो होती रहेंगी जीवन में, लेकिन हर हर चीज में ये आनंद भाव क्या है तो उसमें कुछ आ जाता है। तो मैं नॉर्थ स्टार वही कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे ये अचीव करना है, ये कुछ करना है। मैं ये कहूंगा कि हर हर हर पल में क्या आनंद है उसकी मुझे अनुभूति करनी है, और वही जीवन है मुझे, मेरे।
0: और हमारा कनेक्शन भी औरों से तभी बनता है जब हम एक आनंद को इकट्ठे शेयर करते हैं, भले वो खाने का हो, भले संगीत का हो, भले हवा का हो, भले किसी भी चीज का हो। तो लेकिन हाँ, वो आनंद की ओमनी प्रेजेंस और ओमनीशिएंट ओमनीशिएंस काफी ऑब्वियस है। हाँ जी, इसके बाद मैं
1: जी, आप भी इंजीनियर हैं तो मैं, हाँ सॉरी राजीव जी, मैं कह रहा था कि आप भी इंजीनियर हैं, मैं भी एक मूलतः इंजीनियर हूँ, तो हमें रेजोनेंस के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। मैंने तो कितने फिफ्थ ईयर इंजीनियरिंग में नॉइज एंड वाइब्रेशन में क्या क्या इक्वेशंस किए थे रेजोनेंस को। तो रेजोनेंस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत फिजिकल चीज भी है और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब मैं अपने आनंद में मग्न हूँ तो राजीव जी वो रेजोनेट करता है, तो आपको भी वो महसूस होगा जरूर। तो अगर तो उतनी ही बात है राजीव जी, किसी को कुछ अपने अपना भाव बताने की या अपने अपना आइडियोलॉजी समझाने की कोई जरूरत कभी नहीं रही है, बस आप अपने आनंद में विभोर रहिए, तो अगले को भी वो आनंद महसूस हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आनंद और प्रेम की वाइब्रेशंस की जो बात हो रही है, रेजोनेंस की बात हो ही रही है, तो आइए सुनते हैं फिर से वो गीत जो कार्यक्रम के शुरू में बन, जो आपने सुना था, लेकिन एक अलग ही अंदाज से। तो ये भी गीत है लव, लिखा हुआ अशोक कुमार नाम के नाटककार के लिए द्वारा, लव नाम के ही एक नाटक से। ये अलग अंदाज में है, आप देखिए इसमें उसी बात को थोड़ी संजीदगी से पेश किया गया है, आइए सुनिए। इसके बाद हम जारी रखेंगे सौरभ जी से बातचीत फिर से।

0: आपके कई एक्टिविटीज हैं, वी यात्रा जो है एक टूर्स का है, वो एक बड़ा क्रिएटिव अंडरटेकिंग है, क्रिएटिव एंटरप्राइज है, जिसमें जगह जगह संसार में जाकर के आप दूर से बैठ के ही उन चीजों का आनंद ले सकते हैं। और मैं पढ़ता रहता हूँ आपकी कभी कभी, वो लेटेस्ट उसकी क्या स्केलिंग हो रही है स्कूल्स में, काफी समय से चल रहा है, तो बहुत बहुत बधाई, और वो बहुत अच्छा चल रहा है। और ऐसे ही एलिविएट और कई आपने और भी चीजें शुरू की थी या करते रहते हैं। मेलबर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सोसाइटी के बारे में तो मैं इसलिए बाद में कर रहा हूँ, मैं उसको ऑब्वियस समझ रहा हूँ, लेकिन कई लोग सुनने वाले शायद नहीं जानते हो, तो मेलबर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सोसाइटी ने जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक शौकिया तौर पे चल रहा था, उसको एक नए स्केल पे ले जा करके मेलबर्न को ना केवल इस क्षेत्र में ग्लोबल मैप पे एस्टेब्लिश किया है, लेकिन अब आजकल हम बात कर रहे हैं मेलबर्न घराना बनाने की, तो आपके नेतृत्व में वो जो हुआ है बहुत बहुत सुंदर चीज हुई है। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: धन्यवाद राजीव जी, और नेतृत्व मेरा तो मैं तो बहुत एक उसमें एक खिलाड़ी हूँ, बहुत सारे खिलाड़ी साथ में है, तो टीम एफर्ट है ये, और बड़ा प्यारा टीम एफर्ट रहा है राजीव जी, बड़ा बहुत उस टीम में होने का बहुत आनंद रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो पैलेटिव केयर के बारे में भी आपने कई बार मुझे बताया कि आप जो पेशेंट्स पैलेटिव केयर में हैं उनके साथ जाके समय बिताते हैं, इन सभी उदाहरणों में कम्युनिटी का इज अ कॉमन थ्रेड कि भाई सबके साथ का है, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कम्युनिटी एक्टिविटीज में, कम्युनिटी एक्टिविटीज जनरली प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं, वो कलेक्टिव गुड के लिए की जाती हैं, तो क्या चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि क्या कम्युनिटी एक्टिविटी करने में क्या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के क्या चैलेंजेस होते हैं, और क्या बिजनेसेस को कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से देखा जा सकता है, ये मेरा एक आपके लिए क्वेश्चन है, और आप अपने विचार बताइए इस बारे में।
1: बड़ा सटीक सवाल आपने किया है राजीव जी, मैं अगर गिनूं तो करीब 13-14 ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कंपनी / एसोसिएशंस मैंने शुरू किए हैं पिछले 25 सालों में, और उसके अलावा मैं कहूंगा कुछ 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस में मैं और भी सक्रिय हूं, या तो बोर्ड पे डायरेक्टर हूं, या मैंने इन्वेस्ट किया है एज अ स्टार्टअप, तो उसको मैंने शुरू से देखा है, तो उसके स्टार्टअप की मैं फाउंडर की मैं मेंटरिंग भी कर पाया हूँ, तो यूँ समझिए कि 30-35 ऑर्गेनाइजेशंस तो मैंने देखे हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग फॉर्मेट्स के, स्ट्रक्चर्स के। सबसे पहली चीज मैं कहूँगा राजीव जी, चैलेंज होता है कि क्या आप अपनी अपने पर्पस से, अपनी कम्युनिटी से रेलेवेंट हैं, और खास करके जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इस बात को बड़ी जल्दी शायद भूल जाते हैं, क्या होता है मैं समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इररेलेवेंसी आ जाती है, तो वो संपर्क नहीं रह पाता है जो जिस जो पर्पस है या जो ग्रास रूट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनसे, तो उनसे संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है। और ये बात अगेन, ये बात मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत प्रभावित की थी महात्मा गांधी की जो एक बायोग्राफी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसमें उन्होंने ये बात सटीक कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं समझता हूँ कि किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन को के पास इतने पैसे नहीं होने चाहिए कि उसका एक साल से ज्यादा निकल सके, क्योंकि अगर मेंबरशिप से उसको इतनी आमदनी नहीं हो पा रही है, इतने मेंबर्स नहीं है, तो फिर उसका डिस्कनेक्ट हो चुका है, ये गांधी जी ने बात कही थी, तो और मुझे बात बहुत सटीक लगी, सोचिए बात 100-150 साल पुरानी है, लेकिन बात अभी भी वही है कि क्या आप अपने मकसद से और उसको लेकर के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप रिलेवेंट है। बिजनेस में भी वही चीज है कि अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे जिससे लोगों की डिमांड है, तो फिर बिजनेस आपका चलेगा। तो चैलेंज मेरे ख्याल सबसे फंडामेंटल चैलेंज वही है कि क्या आप रेलेवेंट हैं, आर यू सफिशिएंटली रेलेवेंट। और दूसरी आश्री मैं आपके सवाल का एक और पहलू मैं सोच रहा था कि आपने ये भी पूछा कि एज अ कम्युनिटी वॉलंटियरिंग, एज एन इंडिविजुअल वॉलंटियर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, और मैं राजीव जी एक बात कहूंगा कि मैं सोचता हूँ ये एक धारणा है कि अगर जैसे मेरा जैसा मेरे जैसा कोई है जिसने बिजनेस का काम किया हुआ है या और भी कॉर्पोरेट में जो सीनियर लोग होते हैं तो सबसे पहले सोच जाती है कि मैं किसी बोर्ड पर जाके बैठूं। ठीक है, मैं वो इम्पल्स में समझता हूं, लेकिन मेरी अपनी मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि जो ग्रास रूट्स पे फेस टू फेस एकदम लोएस्ट लेवल ऑन द रोड ऑन द स्ट्रीट लेवल जो काम होता है उसे भी करना चाहिए, चाहे आप कितने भी ऊंचे पोजीशन पे आप बैठे हों वैसे, लेकिन जब तक आप वो एक ऑन द ग्राउंड मानवता से या कुड बी एनिमल वेलफेयर जो भी है, आप जब तक आप वो अंटिल यू गेट योर हैंड्स डर्टी एज दे से
0: वो तब तक स्टार्टअप लैंग्वेज में बोलते हैं गोइंग टू गैम्बा।
1: वाकई में तो तब तक मुझे लगता नहीं है कि उसमें मीनिंग आपको समझ में आएगी जो काम हो रहा है। तो आप बेशक बोर्ड पे बैठिए, आप बेशक वो सब करिए, और जो मेरे ख्याल से जो आपके श्रोता हैं वो यू नो एज एन इंडियन कम्युनिटी हम लोग इस मामले में काफ़ी सक्षम हैं और काफ़ी हमें मैं देखता हूँ कि एटलीस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन में और फिर अब इंक्रीजिंगली नाउ इन बिजनेस एज वेल आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल
0: काफ़ी जागरूक हमारे लोग
1: ऑन बोर्ड।
0: हाँ जी,
1: हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि लेकिन ग्रासरूट लेवल पे भी कुछ करके देखिए, आनंद वहां पर बहुत है।
0: बिल्कुल आनंद आता। मैंने अभी नई चीज शुरू की है, मैं सिटी ऑफ मेलबर्न का विजिटर वॉलंटियर हूँ, तो फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन के आसपास खड़े होकर वो रेड कैपिटल के लोगों को डायरेक्शंस देना, और उसमें दुनिया भर के पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट मिलते हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया के लोग मिलते हैं, और मेरे को फेमस मूवी प्रोड्यूसर से लेकर के ड्रगीज तक के से बात करनी पड़ती है, तो बहुत अच्छा रेंज पता चलता है, और स्कूल के बच्चे आ रहे होते हैं, सब उम्र के सब इकोनॉमिक लेवल्स के लोग वहां पे दिखते हैं, तो वो जो आनंद आता है उस मुझे उसकी याद आ गई। तो एक आते हैं इस बात पे कि आपको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है, आप इंडियन कम्युनिटी में एक्टिव हैं, आप कुछ हद तक ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी में भी एक्टिव हैं, तो ये जो दो कल्चर्स हैं, इंडियन ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी, सो इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया प्लस ऑस्ट्रेलियंस जो अपने इंडियन कल्चर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इन दोनों कल्चर्स की आइडेंटिटी कैसे इवॉल्व हो रही है, इसके बारे में कुछ आपके विचार हैं? क्योंकि अब हम जो हैं यहाँ पर
1: राजीव जी, मतलब हाँ, इसका जी,
0: तो
1: जी
0: मैं ये कहना चाहता
1: हूँ राजीव जी कि
0: हाँ जी चलिए चलिए हाँ
1: नहीं थोड़ा एसिंक्रोनाइज हो गया, आप कहिए आप पूछिए प्लीज।
0: तो मैं ये कहने लगा था कि हम लोगों ने यहाँ पे काफी समय बिताया है, तो कुछ यहाँ की हम कल्चर को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और हमारे जो पैशनेट चीजें हैं, हमारा म्यूजिक है, हमारा खाना है, हमारा जीने का जो ढंग है, उसका भी असर ऑस्ट्रेलियंस पे भी पड़ता है जो हमारे कॉन्टेक्ट क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो उसके बारे में मैं आपका अनुभव क्या है मैं वो जानना चाहूंगा।
1: जी राजीव, मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, मैं पर्थ आया था 1989 में, मैं उस समय 15 साल का था, मेरे पेरेंट्स माइग्रेट करके आए थे, तो मैंने अपनी हाई स्कूलिंग यहाँ पर की, पर्थ में की, मैंने यूनिवर्सिटी पर्थ में की, फिर वहाँ से मैं मेलबर्न चला आया 1996 में। तो मैंने इस देश को एक बच्चे की नज़र से देखा है, एक जवान आदमी की नज़र से देखा है, अब एक मिडिल एज आदमी की नज़र से मैं देख रहा हूँ, और ये देश बहुत ही प्यारा देश है, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे अच्छा देश है, मौके तो मिले बहुत अलग अलग देशों में, काफ़ी लोग अब हम जानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से भी मूव करके यूएसए चले गए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी लाइफस्टाइल उससे कुछ बेहतर हुई होगी, यहाँ की लाइफस्टाइल मैं कहूँगा सर्वोच्च है, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो हैं हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलियन कल्चर के, जिनको अब मैंने तो बहुत सहजता से, क्योंकि मैं बच्चा था तो मुझे बहुत सहजता से भी ये सब चीज़ें मेरे अंदर आ गई, शायद अगर मैं और थोड़ी और उम्र के बाद आता तो थोड़ी मुश्किल होती. लेकिन एक चीज है कि लाइफ का बैलेंस, कि सब कुछ एक चीज पे मत, एकजुट मत हो जाओ. मैं देखता हूं कि जैसे इंडियन कल्चर में हमारी है कि जैसे एकेडमिक एक्सलेंस का इतना ज्यादा एम्फेसिस रहा था. मैं स्कूल में, इंडिया में भी था, तो 90% वही था, उसके अलावा 10% कुछ कर लो तो कर लो. यहाँ मैं आया तो मुझे खुद काफी धक्का लगा स्कूल में कि यहाँ पर कितना बैलेंस्ड अप्रोच और कितना कुछ, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कितनी कितना कुछ करने को मिल रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कल्चर में हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे कुछ भी हो. और मैंने अपने बच्चों का खास करके देखा, जब जैसे मेरे बच्चे जब 12th में पहुंचे तो हर एक स्कूल में हमको बुला करके यही कहा गया कि 12th का मतलब ये नहीं कि आप बच्चा सिर्फ पढ़ाई करेगा. 12th का मतलब ये है कि वो सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करेंगे और उसके साथ पढ़ाई भी करेंगे. और हर एक स्कूल ने ये कहा कि जो बच्चे बैलेंस करके करते हैं, जो दोनों के साथ करते हैं, वो सबसे अच्छा करते हैं एकेडमिकली. Yeah, I love that idea in Australia that life is here to be enjoyed. वही आनंद की बात फिर से आ गई.
0: वही आनंद की बात आ जाती है.
1: आप भरपूर करिए और आनंद सबसे आगे बढ़िए.
0: और आनंद से ऊर्जा भी मिलती है और एनर्जी मिलती है. वो
1: लेकिन वीकेंड पे आप बोट लेके जाइए लेक पे, वो भी आनंद करिए. ये नहीं कि वीकेंड भी आप ऑफिस में पड़े हुए हैं. तो एक वो चीज मुझे ऑस्ट्रेलियन कल्चर की बहुत बहुत अच्छी चीज लगी और बहुत सटीक चीज लगी, जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे इंडियन कल्चर से ऑस्ट्रेलिया में एक जो कुछ चीजें हम ऑफर कर सकते हैं, इंडियन कल्चर से हम ऑस्ट्रेलिया में क्या ऑफर कर सकते हैं. मेरे लिए तो मेरी समझ में सबसे ज्यादा जो इंडियन कल्चर की सबसे अहम चीज है, एकदम मुझे लगता है एकदम कोर चीज है, वो है कि जो हमारे अंदर एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, एक दिव्यात्मा है, और उससे हम कैसे संपर्क कर सकते हैं, उससे संपर्क से हम जीवन कैसे जी सकते हैं. तो ये आइडिया कि भाई बाहर की मतलब जो फिजिकल एंजॉयमेंट है, फिजिकल आनंद है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट, वो टेम्पररी है, सॉरी, और जो परमानेंट है वो अंदर है. तो अंदर जाने का क्या जरिया है?
0: वो परमानंद.
1: परमानंद है, परमानंट. बहुत अच्छे. तो उससे संपर्क करने का क्या जरिया है? और मतलब रिलीजन से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. रिलीजन जो है मुझे लगता है ज्यादातर कल्चर के हिसाब से, आइडेंटिटी और कल्चर की ज्यादा कॉन्स्ट्रक्ट है रिलीजन. लेकिन उस हर रिलीजन के जो अंडरलाइंग स्पिरिचुअलिटी है, वो मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने उस पर बहुत अच्छा काम किया है. और वो उस काम का रिप्रेजेंटेशन करना और उसको हम हमारे फेलो ऑस्ट्रेलियंस को ऑफर करना, ये मुझे लगता है कि हम सबसे अच्छा कर सकते हैं.
0: बात चली है परमानंद की, आनंद लेने की. और आनंद में हमने आज चुना है आपके लिए प्यार, जो कि हम सबके जीवन का आधार है. जो गीत आपने कार्यक्रम में दो बारी अब तक सुना, उसी को एक नए अंदाज से, एक सेलिब्रेशन के साथ, इसको भी मैंने संगीतबद्ध किया है AI टेक्निक से. उम्मीद है आपको पसंद आएगा. और सौरभ जी से बात इसके बाद फिर से जारी रहेगी, उनसे बातचीत का आखिरी अंश इस गीत के बाद.

0: मेरे तो क्वेश्चन अभी के लिए खत्म हो गए, आप और कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं जी कहना ये चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि ये जो आपने जो बात छेड़ी है, ये एक्चुअली काफी गुड बात है, काफी एक तरह से थोड़ी संजीदा भी बात हो गई है कि मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं कि चूंकि हम एक भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े अब एक एथनिक समुदाय बन गए हैं, तो एक बैकलैश भी शुरू हो गया है राजीव जी।
0: बिल्कुल,
1: वो मैंने देखा था जब 1989 में जब हम लोग पर्थ में आए थे, तो उस समय एशियंस जो थे ना, जो चाइनीज ओरिजिन ऑस्ट्रेलियंस थे, उनके खिलाफ उस समय कुछ चल रहा था काफी पर्थ में, दीवारों पे लिखा रहता था एशियंस गो होम। तो वो जो हुआ वो अब हमारे साथ हो रहा है, मैं मुझे मतलब थैंकफुली उस स्केल पे नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी उसकी फुसफुसाहट तो हो रही है।
0: क्योंकि इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन का नंबर काफी बढ़ गया है अभी, तो बहुत विजिबल
1: काफी बढ़ गया है। तो ठीक है, जो जो जो जो लॉ की सीमा को या एथिक्स की सीमा को पार करके आ रहा है, उसके तो लेट द लॉ डील विद इट, दैट आई एम नॉट सेइंग। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी बनती है कि एक तो सिविक अपनी सिविक ड्यूटी हम निभाएं, और दूसरा कि थोड़ा विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स का हम भी सोचें थोड़ा सा, कि अब हम एक विजिबल सेगमेंट है, व्हाट शुड वी बी डूइंग टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स। मतलब ये अज्यूम ना करें कि हम बस आ गए हैं तो बस, वो सब ठीक है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ तो हम कर सकते हैं, सब इंसान ही है। मतलब देखिए, ये आइडेंटिटी वाली चीजें इतनी सुपरफिशियल चीजें हैं। जब उपनिषद की बात हमने छेड़ी है, तो हर एक इंसान अंदर तो वही है, वही दिव्यांग है। तो क्या हिंदुस्तानी, क्या नॉन हिंदुस्तानी, क्या चीनी, क्या कोई और, ये सब कुछ बात नहीं है। तो इस बात को समझना और अपने अंदर से फिर कुछ रेजोनेट करके समझा पाना, ये इसका इसका इसकी जिम्मेदारी हमें
0: उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैं थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। ये बात आप बहुत ठीक कह रहे हैं कि ये इश्यू ना केवल बढ़ना शुरू हुआ, अभी इसके और बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि और पूरे संसार में पॉलिटिक्स भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, थोड़े आइसोलेशन की। तो हमारे साथ आइसोलेशन जो है वो ऐसी चीज है जो दोनों तरफ से बैरियर करता है, खड़े करता है। तो क्योंकि इंडियन ओरिजिन के लोग अब इतने ज्यादा हो गए हैं, एक चीज ये हो रही है कि उसमें काफी ऐसे लोग हैं जिनका सर्कल वो पूरा इंडियन ही है, वो किसी और कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे हैं। तो जैसे ही हम ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस और कहीं जाते नहीं है, उन्हें और कल्चर्स के बारे में नहीं पता है, उन लोगों को लिए जो यहाँ आने के बावजूद भी इंडियन दायरे में ही रहते हैं, उन्हें दूसरी कल्चर के बारे में समझने का मौका नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो उनको थोड़ा सा अर्ज करना कि भाई उस दायरे से निकल के जिस देश में आए हैं वहां के वहां पे मिक्स करके ही जो होगा बैलेंस होगा। तो और इतनी बड़ी संख्या में सब तरह के लोग आ जाते हैं उसमें, जो कई प्रॉब्लम्स पहले यहाँ रिप्रेजेंटेड नहीं थी, अब वो भी आ जाती हैं पूरे भारत से। तो क्योंकि जब पहले नंबर्स कम होते थे, तब आपके ये चांसेस बहुत कम थे कि आप अपने ही टाइप के लोगों में रहेंगे, आपको बाय डेफिनेशन और तरह के लोगों से मिक्स होना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है, इसके कोई रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि जो अंदर से सोच के अपनी रेजोनेंस से। और उसमें ये है कि कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब आप
1: बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है,
0: क्योंकि हम उस समाज में रह रहे हैं, उस समाज की वैल्यूज और इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें बेनिफिट मिल रहा है। सो जब हम व्हेन वी गिव बैक, उसका असर बिल्कुल सामने आता है फिर।
1: तो जी, मैं उदाहरण के तौर पे मैं बता कि जो पैलेटिव केयर का आपने जिक्र किया था एंड ऑफ, तो देखिए मैं 19 साल से ये काम कर रहा हूँ, और जब भी एक क्लाइंट मुझे मिलता है तो कोई 3 महीने रहता है, कोई 6 महीने रहता है, तो यूं समझिए कि हर साल एक या दो परिवारों से मेरा जुड़ाव रहता है। मैं हर हफ्ते जाकर के उनसे मिलता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनके दुख दर्द समझता हूँ, सुनता हूँ। और आज तक ये बात हुई है कि जितने भी मेरे फैमिली से वास्ता पड़ा है, सब ने एक बार तो कहा ही है कि भाई देखिए, हमने एज एन इंडियन ओरिजिन पर्सन आपके साथ जो जो हमारी तालमेल बैठी, जो जो वार्तालाप हो पाई है, यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विद हुम वी हैड दैट सॉर्ट ऑफ लेवल ऑफ कनेक्शन। तो उससे मुझे लगता है फर्क, ठीक है ग्रास रूट्स लेवल पे है, यू नो गिने चुने परिवारों से ही है, लेकिन फर्क पड़ता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके लिए काम करना चाहिए, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन एक है बाय प्रोडक्ट कि अगर हम यहाँ की संस्थाओं से जुड़े जो यहाँ पे मेन स्ट्रीम कम्युनिटी की सेवा कर रहे हैं, हम सेवा भाव से जुड़े, वो हमारा एक, वो भी हमारा एक, एक तो हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है हमारे हमारे कल्चर का कि सेवा भाव हम समझते हैं।
0: सेवा तो भाव, सेवा भाव से परमानंद भाई, वो आनंद है सेवा करने में,
1: परमानंद। हाँ, तो हम इतने लोग सारे होते हैं जो मंदिरों से जुड़े हुए होते हैं, जो सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं। एक और आप उसमें डाल लें इस तरह का कोई कोई मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन जैसा आप कर रहे हैं, जो मेलबर्न, आप सिटी ऑफ मेलबर्न के साथ कर रहे हैं, तो उससे फर्क पड़ेगा, उससे आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा कि इस देश में हम आए हैं तो कुछ तो हम उसका इसका योगदान कर पा रहे हैं, अपने समुदाय से बढ़ करके हम कुछ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं और देश को भी फायदा होगा। तो मैं, मेरी गुजारिश आप प्रोग्राम से यही है कि जो भी सुन रहे हैं कि इस बारे में जरूर सोचिए आप।
0: तो आई थिंक आज के लिए अभी यही खत्म करते हैं। आपसे बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा फील होता है, कई चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। हालांकि ये हमारे कोई नई चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी इन बातों पे फिर से दोहराना में बहुत अच्छा लगता है। और एक बारी फिर से मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, इस ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सम्मान से सम्मानित हुए हैं आप, और हमें और भारतीय कम्युनिटी को बहुत बहुत हमें गर्व है इस बात पर। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई।
1: राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब क्यों ना हो जाए एक स्पेशल पार्टी सौरभ मिश्रा के ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के इस सम्मान के अवसर पर। हम आपके लिए लाए हैं कुछ मिठाइयां। आप कहेंगे कि आप रेडियो पर हमें कैसे खिला सकते हैं? हम एक्चुअल मिठाई तो नहीं भेज सकते, लेकिन आपके लिए लाए हैं हम मिठाई के गीत। और उन मिठाई के गीतों में हैं गुलाब जामुन, काजू कतली और नमकीन के लिए थोड़ी भुजिया। तो बने रहिए, आइए। ये क्या नजर आ रहा है सामने की प्लेट में?

गुलाब जामुन का तो मजा ले लिया, अब बारी है, अब बारी है काजू की बर्फी की, जिसे हम प्यार से काजू कतली भी कहते हैं।

0: दो डब्बे लेंगे
1: अगली बार, अगली बार, अगली बार।
2: समय 9 बजे से लेकर 10 बजे तक एसी स्टेशन 92.3 FM पर या फिर 3ZZZ.com.au पर जाकर के कैचअप करके ये कार्यक्रम फिर से सुनना मत भूलिए। राजीव अरोड़ा की ओर से आज के लिए बस इतना ही। अब बात हो रही थी मिठाइयों में भुजिया की, मिठाई तो नहीं लेकिन नमकीन कह लीजिए, लेकिन हमने अभी चेक किया कि हमारे घर में भुजिया तो खत्म हो गई है, अब क्या करें। अब इसी का ही जिक्र सुन लीजिए इस अगले गीत में, और आज के लिए राजीव अरोड़ा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।